0: यो हो एनबी रेडियो नेटवर्क www.nepalbodh.com।
1: मेरियामा म्युजिक प्राली प्रस्तुत गर्दछ।

भावना म्युजिक सोलुसन सगौरा प्रस्तुत गर्दछ मनसुने लोकदोहोरी गीत अब त पागल भई हिँड्छु होला म। साथी 43 70 18

0: secret.
1: Mobile का charger, headphone, earphone, data cable, memory, pen drive, card letter, सुपर मूल्य में उपलब्ध कराएं सर।
2: अरे किसी का मोबाइल टॉर्च लाइट खड़ी तथा इलेक्ट्रॉनिक सामग्री पर पाइच
3: सुर्ति सेवन करने मित्र का लागि अब विकल्प को रूप में आयोग विकल्प सुर्ति पतंजलि द्वारा उत्पादित अन्य सामग्री यानी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट एंड कम्युनिकेशन में उपलब्ध कराइन
2: एबी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट एंड कम्युनिकेशन बेलदारी बाजार कच्चीपुर
1: मैनेजिंग डायरेक्टर जगदीश चंद्र बाग एवं एनबी परिवार
2: कॉन्टैक्ट 9848820778 9809467570

0: विक्रेता।
1: मोबाइल का चार्जर, हेडफोन, ईयरफोन, डाटा केबल, मेमोरी, पेन ड्राइव, कार्ड रीडर सुपथ मूल्य में उपलब्ध कराइन।
2: हर एक किसी का मोबाइल, टॉर्च लाइट, खड़ी तथा इलेक्ट्रोनिक सामग्री पनि पाइन्छ।
3: सुर्ती सेवन गर्ने मित्रहरूका लागि अब विकल्पको रूपमा आएको छ विकल्प सुर्ती। पतञ्जलिद्वारा उत्पादित अन्य सामग्री पनि यानि कम्प्युटर इन्स्टिच्युट एन्ड कम्युनिकेसनमा उपलब्ध गराइन्छ।
2: एजी कम्प्युटर इन्स्टिच्युट एन्ड कम्युनिकेसन, बेलदारी बजार, कञ्चितपुर।
1: म्यानेजिङ डाइरेक्टर जगदीश चन्द्र बाग एवं एनबी परिवार।
2: कन्ट्याक्ट 9848820778,
1: 9809467570।

यो हो एनबी रेडियो नेटवर्क www.nepalbodh.com। यो हो एनबी रेडियो नेटवर्क www.nepalbodh.com।

0: लाग्छ कि ब्रो?
1: कहिले
0: मिल्दैछ कि ब्रो?
2: राम्रोसँग ल मिलाइदिए,
0: राम्रोसँग ल गाइदिए,
2: साँच्चै
0: मुच्छे